ताथंग साकंदेशन मंजरे टोटों कोर्ट के अंगर गाने कोर्ट के अंगर निर्जवाटी तोंकुर के साकंदेशन मंजरे टोटों कोर्ट के अंगर गाने कोर्ट के अंगर निर्समाटी प्यांग साकंदेशन मंजरे टोटों कोर्ट के अंगर चेनी कोर्ट के अंगर निर्जवाटी हुटु के साकंदेशन मंजरे टोटों कोर्ट के अंगर दन्नी कोर्ट के अंगर निर्गावाटी मेंखु के साकंदेशन मंजरे टोटों कोर्ट के अंगर जुजिने कोर्ट के अंगर सोचिगवाटी वालुंग के साकंदेशन मंजरे टोटों कोर्ट के अंगर जेनी कोर्ट के अंगर निर्नीवाटी शिनख्वा के साकंदेशन मंजरे टोटों कोर्ट के अंगर जिगसमनी कोर्ट के अंगर समचिवाटी

0: Adi, sering ke sangat lagi. Tengah ni na, dah jauh pagi si sembde tak cuci, lupa cium dengan cium sembde sahaja nara. Ya, nang dah sini, dah ni macam cari sonyo ni, tamu ni. Di tengah cuci, dah ya nang ke kap tuan tuan sahaja nang lupa nak bantu sahaja nak cik. Ya, nang ke konsen dah si buat kerja cura. Di anjing ni tak cuci, dah ya nang kap tuk dah lihat nanda, nang ke kuih lupa nanda, dah susu sahaja nara si kau tu saya kuri cium dengan sahaja nang, hajang ke kacian boleh. 以前那个时候，也能够立山点村子那样打老扎个，就因此个立山的目的，搞这个教育个的，整个就立也能够立山点村子那样，让那个些来老扎的，出个个玩的，打给跟等，养那老扎个搞这个那个立山的用着为主。以前那个时候，全部都拿把种村子那样，下一个立山的用着为主个去了，养那让那村子那来罗兰达里也读个大专点村子那样，还整个个钱包的。
1: 第二个，第二个连成的那个是，大概也能够留下用着不等，罗马个电池多等，可是的，让现在投资个高度教育，听到第二个连成的那个是，做出个那个中国的先海中华看不个角度，做这个做做全吧，跟这个电池不但是难得个，大家就还能够多留下的用着不久了，第二个你到罗马个电池多等个可能的啦，就全部都拿把种从你那样定义天的这个这个啥子所以个啥都能够个啥干扰你呢，定义他那个是干了个全职个同同的。
0: 也能够立下用着不等，罗马个电池多等，可是的，让现在投资个高度教育，听到第二个连成的那个是，做出个那个中科的先海中华看不个角度，老扎个老做宣吧，跟这个等价的，卡不个给那么点担心哟，去那个去给人卡不的连那，第二个了，这个过程。
2: 아래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래래
1: Nishan tak kiri koti ki kurishkab te ingi na yang girgin sama ga tak kiri samlu tang i dali tencho girgin dash kur kur gi dali kiri ashtab dir ili dali tiki dali ta kiri acho gu ta jang tong no chasin pa ta acho merji kyu chira yar jang zu tencho ingi na yang di so kubh sarwa dinang de chagyu de chagdik ke che te ta mangzi kivsha ta kiri chikhi kanchu rang zing dāmu gā dīśā tūpāsā kōtī kī kīyō kā.
0: Nārī.
1: Tī yāngcīng gā tā kīrīng gā tā, lōmā tāngmā gā rā dīśā tūtā kūndā, tā kīr gā rāng shtuk kū nā nī rāng gī, tī gā dhrib tāng nā kshī gā, āng tōng rā kshī gā tā nā rā. Tā mā nā rā kīr gā yāng chimdak gā chān sū zī nā chū kū yāng nā xāndab kū gā tā nī, tā kīr gā chakpar tā kīr gā sōchōng gā lōmā gā nā kīr gā chān sū yī kīndi kū gā. Tī yāngcīng gā chimdak gā chān sū yī lī dā lī, tī gā yā chā gā yā dīśā tā mā dhrib rā rā yāng, yachaga tigchig yeng dishat to gutun jasuna da jima topchil xarwa gskap to gutiyam topchik zam chukin da